0: अब साथ मिलकर एक तस्वीर बनाएं।
1: मिया को ये बात पसंद आती है। वो कहती है,
2: ईन है।
0: अच्छी तजवीज है।
1: मैंने भी सपोरो बर्फ मेले की बहुत तारीफ सुनी है।
0: ये शानदार मेला हर साल फरवरी या उसके करीबी दिनों में मुनक्किद होता है। इसमें कुदरती और मसनूई बर्फ से बनाए गए कई सौ फन पारे होते हैं। बास बड़े शपारे तो 15 मीटर तक बुलंद होते हैं।
1: बर्फ से इतने बड़े बड़े मुजस्मे और दीगर फन पारे बनाना यकीनन एक मुश्किल काम होगा।
0: फन पारे बनाने वाली टीमें उस मुकाम पर किसी इमारत की तामीर की तरह बांसों या पाइपों से परात बांधती हैं और बर्फ ढेर करने के लिए क्रेन इस्तेमाल करती हैं। पहले मुजस्मे या किसी इमारत वगैरह के फन पारे को उमूमी शक्ल दी जाती है और उसके बाद बारीक तराश खराश की जाती है। फन पारों की तकमील में कई माह का अरसा लगता है।
1: फिर तो सपोरो बर्फ मेला वाकई देखने से ताल्लुक रखता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल।
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, तस्वीर बनाए। अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए मिलकर कोई काम करने की तजवीज़ दे सकते हैं।
0: शाशिन के मायनी है तस्वीर। शाशिन ओ तोरी माशो, तस्वीर बनाएं या तस्वीर खींचें। आज का नुक्ता, आइए मिलकर ऐसा करें, यह कहने के लिए फेल की मस शक्ल के मस को माशो में तब्दील किया जाता है। कलीदी जुमले में शाशिन ओ तोरू यानी तस्वीर खींचना का फेल तोरू, जिसकी मस शक्ल तोरी मस है, माशो शक्ल में इस्तेमाल हुआ है, यानी तोरी माशो।
1: तो सामईन सुनिए और दोहराइए।
3: तोरीमाशो, शाशिन ओ तोरीमाशो, शाशिन ओ तोरीमाशो।
1: जी सामईन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
0: और अब एक मकालमा सुनिए जिसमें खातून दोस्तों को मिलकर दुकान में दाखिल होने की तजवीज दे रही है।
4: कोनो मिसे नी हाइरिमाशो।
2: ई देसु ने।
0: अब इस मकालमे की तशरीह।
4: कोनो मिसे नी हाइरिमाशो,
1: आए इस दुकान में दाखिल हों।
0: कोनो मिसे यानी ये दुकान, इसके बाद का हर्फ जार नी सिमत को जाहिर करता है, चुनांचे इसका मतलब हुआ इस दुकान में। हायरू के मायनी है दाखिल होना। फेल हायरू की मस शक्ल है हायरी मस, जो यहाँ माशो शक्ल में इस्तेमाल हुआ है, यानी हायरी माशो।
2: ई देसु ने,
1: अच्छी तजवीज है।
0: ये जुमला मुखातिब की बात से इत्तेफाक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ई तो आपको याद ही होगा यानी अच्छा। जुमले के आखिरी हिस्से का दिस इसे शाइस्ता बनाता है और बिल्कुल आखिर में ने इत्तेफाक को जाहिर करता है।
1: तो सामईन सुनिए और दोहराइए।
3: हाइरिमाशो, कोनो मिसे नी हाइरिमाशो, कोनो मिसे नी हाइरिमाशो।
0: अब एक साथ कुछ करने की दीगर तजावीज के साथ मश्क करते हैं। आप सपोरो के मशहूर सैयाहती मकाम घंटाघर जाना चाहते हैं। घंटाघर की जापानी है
3: तोकेदाई, तोकेदाई।
0: फेल जाना यानी इकू की मस शक्ल है
3: इकीमस, इकीमस।
0: तो आए घंटाघर चलें को कैसे कहेंगे?
5: तोकेदाई नी इकीमाशो, तोकेदाई नी इकीमाशो।
0: आप चलते चलते थक चुके हैं और कहना चाहते हैं आए कुछ देर आराम करें। कुछ देर को कहते हैं
3: चोत्तो, चोत्तो।
0: फेल आराम करना की जापानी है यासुमु और इसकी मस शक्ल है
3: यास्मीमस, यास्मीमस।
0: तो सामीन कोशिश करें
5: चोत्तो यास्मीमाशो, चोत्तो यास्मीमाशो।
1: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमले बना लिए होंगे।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का लफ्ज मकालमे में मिया ने बर्फ के फनपारे को देखकर कहा था। ये सिर्फ एक मुख्तसर सा लफ्ज है लेकिन है बहुत कारामद, इसे याद कर लें।
2: सुगोई,
0: सुगोई के मायनी है शानदार या हैरत अंगेज। ये कोई चीज देखकर हैरत से दंग रह जाने या इंतहाई मुतासर होने की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
6: सुगोई,
2: सुगोई,
7: सुगोई।
1: सामईन अब आपकी बारी है, तो सुनिए

0: और दोहराइए।
1: सुगोई।
2: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम मिलकर तस्वीर बनाने की तजवीज देती है।
3: सुगोई ताम, मीते मीते,
4: ओकी देसु ने, हजुमेते मिमाशिता।
5: どうやって作ったんだろう。
4: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
3: いいね。
1: ミーヤーのトラベルガイド。
0: अब मिया का सफरी हिदायतनामा। आज का मौजू जापान का सरे फहरिस सियाहती मकाम होक्काइडो है।
2: होक्काइडो जापान का सबसे शुमाली प्रीफेक्चर है। वहाँ वसी और रीज मैदानी इलाके भी हैं, दलदली खत्ते भी, सहरंगेज खूबसूरत झीलें भी और कुदरती गर्म चश्मे भी। इन कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद वहाँ जाती है। मुल्क के बाकी इलाकों के बरक्स होक्काइडो में मौसम में बरसात नहीं होता और गर्मी भी कम पड़ती है। ये खसूसियात इसे ज्यादा मकबूल बनाती हैं।
0: अच्छा अनवर साहब, होक्काइडो के कुछ काबिल-ए-दीद मकाम के बारे में भी बताएं।
2: फुरानों में लवेंडर के खूबसूरत खेत एक मकबूल मकाम है। जुलाई में पहाड़ी ढलानों पर तहद निगाह हल्के उदय रंग का कालीन सा बिछ जाता है।
0: वाह, ये मंजर तो वाकई खूबसूरत होगा।
2: यकीनन। इसके अलावा यूनेस्को के आलमी कुदरती वरसा मकाम शिरेतोको में गिलहरियाँ और लोमड़ियाँ वगैरह जंगली हयात की बेशुमार अकसाम पाई जाती हैं। अगर आप कश्ती का टूर लें तो व्हेल मछलियों और भूरे बीचों का नजारा भी मुमकिन है।
0: सुगोई, हैरत अंगेज। वैसे होक्काइडो की सर्दियाँ तो मुंजमद कर देने वाली होंगी।
2: जी हाँ, सर्दियों में वहाँ शदीद बर्फबारी होती है और दर्जे हरारत मनफी होता है, लेकिन इसी वजह से बर्फ मेले या सरमाई खेलों से भी लुत्फानंदोज हुआ जा सकता है। और असाही कावा शहर के असाही यामा चिड़ियाघर में बर्फ पर कतार में चलते हुए पेंगुइन भी देखे जा सकते हैं।
0: शानदार। बस तो फिर होक्काइडो को मैंने उस फहरिस्त में शामिल कर लिया जहाँ मैंने मुस्तकबिल में जाना है।
2: होक्काइडो के खाने भी शानदार हैं। सिर्फ समंदरी खुराक ही नहीं बल्कि वहाँ रामेन और मटन की डिशें भी मकबूल हैं। इसके अलावा होक्काइडो ताज़ा सब्जियों और फलों के लिए भी जाना जाता है। वहाँ के युबारी खरबूजे, मकई और आलू खसूसन मशहूर हैं। होक्काइडो का सफर हर लिहाज से पुरलुत्फ होगा।